सतगुरु जी की साजी निवा जी सात संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। गुरबाणी का रस मानन वाली श्रद्धालु संगतां लई अज टी सीरीज सुपर कैसेट ने यह उपराला किया है कि उस महान हस्ती की आवाज़ में किसी होर आवाज़ विच रिकॉर्ड करके संगतां नूं उन्हां दे गाए हुए शब्द सुनाए जाए। उस महान हस्ती नूं उन्हां शब्दां राहीं श्रद्धांजलि भेंट की जाए जिन्हां की ओ मिठी आवाज़ साडे कन्नां विच हले तिकर भी गूंज रही है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जिसनों भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी ने बड़े उत्साह नाल इन्हां शब्दां दी कथा करके उस पुरानी याद नू ताज़ा करदे होए भाई साहब भाई गोपाल सिंह जी नू श्रद्धांजलि अर्पण कीती है। ते इन्हां शब्दां दा संगीत उसे पुराने ढंग नाल ही महान संगीतकार श्री के एस नरूला जी ने दिता है। टी सीरीज सुपर कैसेट वालों ये उम्मीद करते हाँ कि सारे माई भाई इस दिती हुई श्रद्धांजलि का रस मानेंगे ते सुपर कैसेट नूं धनवादी बनाएंगे।

मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भर दियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जा। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा कर दे, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन कर दे, फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किसी भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर ले, सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जाए। इतिहास विचों की सोझी मिलती है, लखां दी फौज ते इक पासे महाराजा रणजीत सिंह। अज इस मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित होई, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे, रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित लई है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई वी सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम कीता है, कोई भी मेरे अगे ना खलोया। आ जदों घर आया ते नित कर्म अनुसार सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे कमरे विच गया। जदों जाके नमस्कार करन लगा ते मन दे विच ख्याल आ गया, मना जिस ते गुरु ने कराई है ते वड्याईयां तू लई जांदा है, तेरे मन दे विच क्यों मैल आई है कि मेरी सियाण पकड़ करके सब कुछ होया है। आ देखो असी निकी जिनी चंग्याई कर लईए, एक पखा भी गुरु घर दे दईए ते मैं मेरी विच फस जांदे, ते उपर मेरा नां लिख दिता जावे मैं दिता। आ मन विच मैल ही आई है ते रणजीत सिंह ने की कीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरणा विच बैठ के एक हाथ दे नाल अपनी दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार रहे। ऐ मना क्यों तेरे मन विच मैल आई, जित कराउण वाला गुरु ते तू बड़ियाईयां लई जांदा है। पढ़ो इतिहास की आख रहे ने, जोर जोर देनी चंडा अपने मुंह ते मार रहे ने, ओ काणिया वड्याईयां देण वाला गुरु ते वड्डा तू बणी जांदा है। हरी सिंह नलुआ बार सुन रहा है, सतगुरां दे कमरे विच रणजीत सिंह नूं कौन बोल कबोल बोलदा है। आ जदों जाके दरवाजा खोलिया ते की सकिया, रणजीत सिंह आप सतगुरां दे चरणां विच बैठा, एक हाथ नाल दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार लिया। क्यों तेरे मन विच मैल आई है, क्यों मैं मेरी आई है, सब कुछ करन वाला गुरु है। ते नलुए ने जाके हाथ पकड़ ले, रणजीत सिंह तेरे अखां दे हंजू दस रहे ने, तू अपनी औगणा ते पछता रहा, गुरु बड़ा ही दयालु है, उठ खड़ गुरु ने तेनू बख्श दिता है। तो सत्संगियो कदे भी मैं मेरी ना आवे
ऐ सतगुरु जो किछ है सो तेरा।

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपस क्या है साडा क्यों जै सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ है, महाराज जी का प्रकाश भी है, उसे घर दे विच शराबा ते कबाबा भी है। नहीं बई तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है, अपने कमरे बड़े बड़े, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते बड़े कमरे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां तक छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईश्वर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लगे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनदे, कोई गुरु सिखा खुशियां ते तेरे मगर मगर फिरनगियां, तू किते गुरु नूं प्रगट गुरां की देह मन के ते देख, इसका सत्कार करके ते देख, तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है कि सारा कुछ तेरा है, और संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ते दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे, कोई गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया, जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया। नहीं बई दिलों आस मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच कुछ भी नहीं है।

दड़ू भी अले माने न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ ना हो जति सति नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक दिन की शरणा जन तू नाही विसरिया आस्था महला पंजवा पई प्राप्त मान।

सरंजा मिलाग भव जल तरण कै जन्म ब्रिथा जात रंग माया कै राउ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जान्या हरदाया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करें आए सब बैरन कौ आज संघरें आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है जन जन सत्र हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरिया सुजु करे हो रक्षा राख ले हो मुह रख नारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो बुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जुग अवतरा काल पाए कर विष्ण पर गासा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जश्न उपजायो

तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ चारे। तुम सब ही तेरे तिरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का जीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत बहन बहन तो ये तेती। तुमरा लखन जाय पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज से तज केनी, उत्पज खान बहोर रच दीनी। कहूं भूल राजा बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव, आज जगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार या सिख संगरो। दोष्ट जिते उठ बत उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस तो तब सरणी परे, तिनके दोष दुख तह मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट रेष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शास सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहीं उबारा।

सवैया कृपा पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गौ आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तो हे बखाने दोहरा सगल

मान्यवान थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारू जे को खावे जे को पुंचाए जिसका होए उधारू एह वास्तव तजी न जाई नित नित राखुर धारू तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारू श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण यारी को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया तरस पया मेरा मत होई

साहिब कलगीधर पातशाह महाराज जी ने शीश की मंग की। लाहौर तो आया होया दया राम सतगुरां दे सामने हाजिर होया। मेरे गुरदेव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज इस भाई दया राम दे सिर नूं प्रवान कर लैंदे ने। संगतां बैठियां इस गल वास्ते दो जित्ती ने महाराज कि भाई दया राम दा सिर धड़दे नाल वखरा कर देणगे। यकीन नहीं आउंदा, ऐसा हो नहीं सकदा। जेड़ा गुरु अपने सिखां दे नाल पुत्रां नालों वध प्यार करदा है वो गुरु अपने सिख दा सिर धड़दे नालों वखरा कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सिर्फ मन दे फुरने सन, पर उधरों एक बार यकीन भी बजता मन नूं कि कुछ धड़ बेजबान निकल दी आवाज आई है। जेड़ी आवाज इस गल दा प्रतीक है कि सतगुरां ने दया राम दा सिर धड़दे नालों वखरा कर दिता है। यह आवाज सुनाई दिती नजदीक बैठे होया नूं। मन विच अजे भी यकीन नहीं बजता, ऐसा हो नहीं सकता। पर शंका उदो दूर हो गया जदों मेरे कलगीधर पातशाह फिर आके स्टेज ते खड़े हो गए। सतगुरां दे हाथ विच वी तलवार जिहदे उत्तों ताजियां बूंदां खून दियां टपक रहियां ने। कोई भुलेखा ना रह गया, कोई शक ना रह गया। सारिया ने अपनियां अखां दे नाल इस शमशीर दे नाल लगा होया खून वेखिया। डिगदे हुए तुपके धरती दे उत्ते वेखे, बस मन हैरानता दे विच छा गया। एक दूजे वल्ले वेखण लग पए की कारा वरत गया। अज तक कदे ऐसा होया नहीं। गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह महाराज तक कदे ऐसा नहीं होया जिहो जिहा अज असीं अपनियां अखां दे नाल वेख रहे हां। और इह की कारण है? अजे संगतां दे मन अंदर विचार सी, मेरे सतगुरां ने अपनी चुप नूं फिर तोड़िया, आवाज दित्ती गुरु की संगत बड़े ने दुनिया दे अंदर कहण वाले, दाता जो कुछ है तेरा ही है। सच्चे पातशाह बख्शिया होया संसार, दुनिया की दौलत सारा कुछ तेरा ही है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझ को सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु की संगत कहण वाले बड़े ने, पर गल कहण नाल नहीं बनदी जिन्ना चिर करनी वाले ना होण। इस संसार दे अंदर ओ जिस मनुख दी कहनी होर है ते करनी होर है, ओ कादा मनुख है? उन्हां दी बाबत तां मेरे साहिब कहिंदे जिन मन होर मुख होर ते कांडे कच्चा ओ ते कच्चे ने। इस संसार दे अंदर जीवन जैसा है उसे दा असर है, उसे दी गल ते यकीन है जेड़ा कहनी ते करनी दा एक है। प्यारे गुरसिखो, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दा घर इसे गल की परपक्ता से जोर दिंदा है। गुरसिखा बनावटी नहीं बनना, वखावे वाला नहीं बनना, अंदरों ते बाहरों एक बनना। कलगीधर पातशाह महाराज अज जदों स्टेज ते फिर दोबारा खलोते ने, सिख हैरान होए ने, संगतां विच बैठे हुए सतमुची सतगुरां ने दया राम दा धड़दे नालों सिर वखरा कर दिता है। मेरे सतगुरां ने फिर आवाज दिती गुरु की संगत अजे एक सिर आया, अजे होर दी लोड़ है, अजे हाथ विचली कृपान, इस दी प्यास बुझी नहीं। उठा कोई योदा, उठा कोई सूरमा तुहाडे विचों जेड़ा परिवार दा मोह त्याग के अपने गुरु की खुशी हासिल करना चाहता है, उठे कोई तुहाडे विचों? संगतां एक दूजे वल्ले वेखदियां ने, एक ते चला गया भुलेखा, कोई नहीं रह गया, सिर धड़दे नालों वखरा हो गया। कौन उठेगा दूजा जिस नूं सामने मौत दिसदी होवे, चमकदी हुई शमशीर दिसदी होवे? जेड़ा जाएगा ओदी गर्दन दे उत्ते दा वार होना है। इह विचार सी मन अंदर, इन्ने चिर नूं उठिया एक सिख, उहने गल विच पाया पला, आण के सतगुरां दे सामने खलो गया, अदब दे नाल सिर झुका के शहनशाह मुआफी चाहुंदा, लेट हो गया। गुरु गरीब नवाज सिर ते उसे दिन तुहानूं भेटा कर दिता सी जदों तुहाडे कदमां ते धरिया सी। सिर्फ गल इन्नी है कि मैं लेट हो गया, फिर भी दाता मेरी इस गलती नूं नजरअंदाज करदे होए, मेरे गुणां नूं बख्शदे होए, सच्चे पातशाह दो नंबर दी सीट ते दास नूं खलिहार लो। आया सतगुरां दे सामने सिख की बेनती करदा है, श्रवण करो इन्हां अखरां विच, ढाडी जत्था इहो कह रहे हैं।

घर छूट गया है, मन दा तो संसार है, मन नहीं तो मित्र मान लिया, मन नहीं तो स्त्री मान लिया, मन नहीं तो भ्रा मान लिया, मन नहीं तो बच्चे मान ले ने, है तो ऐसा कुछ भी नहीं, है तो सब प्रभु का एक पिता एक इसके अंबार, तू मेरा गुरहाई। ये गलता इसने मनी ना, समझ विच ना आई, इसने तो अपना संसार मान लिया। इस करके हजूर कहते ने जो ये मन गिरिया मरिया, इसका झूठे मन का अहंकार खत्म होया, परमेश्वर ने अपनी सत्ता खिंच ली, तो फिर ये दसे इंद्रे जड़े सन ओदे बंधन भी टुट गए, इहदा मित्र भी कोई ना रहा, इहदा भाई भी कोई ना रहा, इहदा बच्चा भी कोई ना रहा। जे कोई हुंदा ते छुड़ा लैंदा, जे कोई हुंदा ते दी जबान ते ताकत दे देंदा, जे कोई हुंदा ते दी अखां विच वेखण दी शक्ति दे देंदा, जे इहदा कोई हुंदा ते दे कन्नां विच सुणन दा स्रोत पा देंदा, जे कोई इहदा हुंदा ते इहनूं उठा के फिर जिंदा कर देंदा, पर इहदा ते कोई है ही नहीं। केवल ए ताकत उस परमेश्वर विच है, प्रभ पावे फिर साथ मेरा, वो आप मार भी सकते है ते जीवाल भी सकते है। ए ताकत उस परमेश्वर विच है, उस अजन्मा हथ विच है, उस एक ओंकार विच है, उस सत कर्ता पुरुष विच है जिसने सानू बनाया, इसलिए सत नाल प्यार करो, और वो कितने दूर नहीं, वो थोड़े पास बैठा है, जिस तरह फुल दे विच खुशबू है, इस तरह थोड़े अंदर वो उसकी खुशबू है, वो आप बैठा है, उसनू प्यार करो और प्राप्त कर लो। मृतक भाए दसे बन छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवित बंधन तोड़े। मरिया के बंधन टाइमली सब दे छुट जाते, जदों को प्राणी मर जाता है तो आप कहने भी हूं वो कोई गल ना करो, बेचारा मर गया, हूं की निंदा करनी है, ये चंगा कहना है, मर ही गया, हूं वो कोई गल ना करो। आप ऐं कहने मरिया तो ये इंद्रे जड़े ने अलग होंगे ही नहीं, पर कबीर साहब से नवी गल समझाते, उन्होंने सत का ज्ञान है, उन्हां अंदर सत साक्षी है। आखते ने ही बच्चियो मेरी गल सुनो चंगी तरह, कहत कबीरा जो हर त्यावे, जो हरि का ध्यान करे, जो सत की आराधना करे, जो सत नूं हाजर समझे, जो है बिल्कुल उस नूं हाजरी विच लियावे, उसका भय करे, उसकी सेवा करे, उस नूं याद रखे, उसकी दित्ती हुई दात समझ के वरते, फिर की हुंदा है, वो जीवनियां ही इस बंधन को अलग हो जाए। मरिया तो ये बंधन सब दे टुटने ने, पर ये टुटन तो बाद इन होर बंधन पै जाएंगे, पर जे ये जीवनियां ही सत नूं साक्षी कर लवे, तां फिर जीवनियां ही शरीर विच रहिंदियां ही इहदे बंधन टुट जाएंगे। अखां हुंदियां होईयां ये प्रभु वेखेगा, कन्न हुंदिया होया ये वाणी सुनेगा, रचना हुंदिया होया ये सत बोलेगा, हाथ हुंदिया होया ये सेवा करेगा, पैर हुंदिया होया ये चंगे थाव जाएगा, सारिया इंद्रिया तो ये चंगे कर्म लेगा, और ये जान के कि मैं मुसाफर हाँ, ये दाता ये शरीर ये इंद्रे ये ज्ञान इंद्रे ये प्राण की सत्ता मेरे प्रभु दी है, ये मकान ये जमीन ये मान समान ये जेवर ये माया ये पर रोटी पानी ये कपड़ा ये सोना ये चांदी ये सब कुछ परमेश्वर ने प्रसन्न होकर मैं वर्तन वास्ते दिता है, असली मैं इन केवल वर्तना ही है, वर्तदिया वर्तदिया मैं उस प्रभु की याद में टिका रहा, अपने इस तन की इस मन की वरतों भी सही कर लवा, क्योंकि एक दिन मन भी इसके पास नहीं रहना, तन भी इसके पास नहीं रहना, जदों मन और तन दोए इसके पास नहीं रहेंगे, तो फिर ये संसार भी इसके पास नहीं रहना। इस वास्ते जिन्होंने सत का ज्ञान होया उन्होंने इस संसार नूं मिथ्या मन्या, कि ये है नहीं, कि सुपने मात्र है, ये अज्ञानता के कारण नेरे भी जिस तरह असी करस्ती नूं सर्व समझ लैने, इस तरह अज्ञानता

बड़ी अगमी विचार है। अगमी गाथा इन्हों के तहत छुपी हुई हैं। उसे मैं खोलने की कोशिश के यत्न देखा, थोड़ा जहा मैं दावा करा इस चाहे अहंकार समझना। ठीक है, जिस अवस्था में मैं बयान कराँगा ये अवस्था मेरी नहीं है, पर इस अवस्था की समझ आ गई है। बस इतनी मैं कबूल कर रहा हूं अवस्था मेरी नहीं, क्योंकि उस अवस्था पहुंच के मन को रवदा रूप हो जाता है, संत हो जाता है कि मैं सतगुरों की हजूरी पूर्ण सच्चाई बयान कर रहा हूं। ना कोई मैं संत, ना मेरी वो अवस्था, और इसमें मेरी फोकी निर्माणता भी ना समझना सच्चाई। हाँ, मैंने समझ पता चल इतनी गल आखंड उसके अहंकार समझ लो पड़ी। मैंने समझ आ गई है अजय पूर्णता में कि होया 48 साल तो कथा कर रहे हैं, कि होया निकले में कर रहे हैं, कि होया तो अमृत सक रहे हैं, कि होया तो गुरु का बाणा पा रहे हैं। अजय गुरु का सुभा नहीं है, नहीं, नहीं। इतनी मैंने समझ आ गई है, इतनी समझ आ गई है। समझते बुथेरिया नहीं आती, बड़ा दावा कर देना कि जान सब कुछ पता, बस इसे करके दिखा दे, इसे करके दिखा दे। भी मैं उसका बहुता विकार संसार दे इसे ना समझी। अंधेरा अज्ञान करके आंदा है, अज्ञान अंधेरा दो कारण करके आंदा है। एक तो बाहर अंधेरा है, सूरज नहीं है, क्योंकि सूरज एक समय सारी पृथ्वी से चानना नहीं करता, अच्छे बाद अंधेरा रहे। दूजा यह भी अर्थ करते हैं, अंधेरा ज्यादा आंदा है, रोशनी घट आती है। सागर तीन हिस्से है ना, 60 फुट तक रोशनी जाती है, सागर जो है सूरज की थले से अंधेरे, जमीन के अद्धे भाग देश भी अंधेरा है, अंधेरा रहने। एक से यह अंधेरा है, सूरज नहीं, अंधकार है, मस्या की रात अंधेरा। दूसरा अंधेरा है, अखा में रोशनी नहीं है, अंध भावे सूरज चढ़े पर अंदर। दास के नाल लालबन 10 साल तक एक ऐसा सज्जन रहे, ज्ञानी भगवान सिंह बड़े चोटी के संगीतकार सन, जन्म तो लेकर ही सन। अजकल एक बहुत 35-40 साल तो कवि चल रहे हैं, यानी जय सिंह शोभ लेकर जाएंगे। रायपुर की गल 12 बजे समाप्ति हुई, मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पहले कमरा भाई भगवान सिंह जी का बैठे सन, बत्ती जल रही थी, जन्म तो नेत्रहीन सन। मैं सुते सिर बैठ गया, पता नहीं कि मजाक मैंने सुनी। मैं कहनी थोड़े लिए दिन भी रात है, रात भी रात है, सुते सिर गया, बत्ती जल गई। मैं थोड़े लिए थे दिन भी रात है, रात भी रात है, दिन भी अंधेरा है, रात भी अंधेरा है। कह लगे मस्कीन जी, थोड़ी जानकारी च मैं वादा करा, मैनू अंधेरे का कोई नहीं, कोई नहीं। दंग रह गया मैं, तो जन्म तो अंधा है। कहिंदा मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं। फिर इस मैं गहराई ना लिया, क्योंकि वो अर्थ बहुत देर गया नहीं सन, कहने सिर्फ कीर्तन नहीं करते सन, गुरबाणी की कुछ विचार धारा में भी डूबे रहे। शायद रात में बैठे हो इसे विचार मैं कह लगे मस्किन जी, मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं। उतो मैनु ख्याल आया अंधेरे को वेखण वास्ते भी अखा च रोशनी चाहिए है, ये किमें दिखाई देगा। आप इतने कहने बैठे अंधकार को देखने वास्ते भी है,

माया चित्र विचित्र भी मोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत

की ए परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आनन होई। मिथ्या परम अर्ष पर मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मानिया। कैत नाम दो हर की रचना देखो हृदय विचारी काट काट अंतर सर।

बयालीस लख जीव जल में होते बीठल पहला काय करो, जत्र जाओ तत बीठल बहला, मां आनंद करे सब केला रहाओ। आनी ले फूल परेई ले माला, ठाकुर की हो पूज करो, पहले बास लई है पवरे, बीठल पहला काय करो।

अमेरिका की मत मत काटो जम की फांसी, कहां करो जाती कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ, रांगन रांगो सीवन सीवो, राम नाम बिन करी न जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम त्यावो, सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा, आशा

जब ते सुद नाही मन अपना रहाओ, सिंगत भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा खासा। पार ब्रह्म जो तीन सी आशा से ना भाव सी, रामा भगत।

कर जन्म देला गुरु उपदेश पहला संत के प्रसाद नामा हर पेटला आशा बाणी श्री रविदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निर्गमीन प्रेंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जाम है कांसी के तक आस मादो अभिद्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहा त्रिजग जौन अचेत संभवे उन पाप असोच।

काल फास अबद लाजे कछ ना चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तक गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम मा जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत चो ओलग ओलगनी और इक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावे असंत पापी सन। रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा। माँ बहु सत्संगत सर्व तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेद सपेयल हम बतरे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माँ देव जैसे मधु मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास चमारा। आशा कहाँ पे जो तन पे छिन छिन प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद पान मन पान करत पायो पायो रमैया धन। रहाओ संपत बिपते पटल माया धन काम है मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधे तेरो जन कह रविदास छूट वो कम गुन। आशा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरते जन गए निस्तरे। रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम दिए दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है। रहाओ जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना बिनस गया जाए कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग पाई बाजी गरसो मोहे प्रीत बन आई। आशा वाणी भगत तन्ने जी की एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। प्रमत फिरत बहु जन्म दिलाने तन मन तन नहीं तीरे। लालच बिख काम लुगड राता मन बिखरे प्रभ हीरे। रहाओ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जानिया। गुंते पीत बड़ी अनपांती जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे। दुख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिस्तरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ध्यान मान मन एक मये। प्रेम तगत मानी सुख जानिया तृप्त अघानी मुक्त भये। जोत समाय समानी जाके अचली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया तरनी तर मिल जन संत समानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम देव मन लीना।

माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैननाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया। ए विद सुन के जातरो उठ पगती लागा मिले पर तख गुसाइया तन्ना वड़ पागा। रे चित चेत सीना दयाल दमोदर विभय न जानस कोई जो पावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सो वही रहाओ। जननी केरे उदर उदक में पिंड किया दस द्वारा दे आहार अगन में रखे ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे पंख इस बाहर पंख खीर तिन नाही पूरन परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। पाखन कीट गुप्त हो रहता

हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे चेते बैठ गया। कत कूंजा चेत दो सावन बिजलियां, सियाले सोहंदियां फिर गलबाड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गंडेंदियां छे माह तुड़ंदियां हिक

आलमूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग गुजरी महला पहला चौक दे कर पहला तेरा न

देवै सो खावना, कहो नानक साचा है। गुजरी मैला पहला नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पणे मुख कंठ सवार। ताको अंत ना जाई लखना, आवत जात रहे गुबार। प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करें जन पूरे, मुन जन सेवे गुर विचार। रहाओ रव सस दीपक जाके त्रिभुवन, एका ज्योत मुरार। गुरमुख होए सो एनस निर्मल, मन मुख रहन अंधार। सिद्ध समाज करें नित चगरा, देह लोचन क्या हेर। अंतर ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुरु चगर निगेर। सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, सच महल अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, कर पहला

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरे दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अगर विसर सब जाए। हर से किंचित गहर है जरा का पौ न हो गई, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत सो एक सहज उपजिया, रेत जैसी भगत बनी आप से की आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, बिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है। जो लोचे सब कोय कूड़े की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे। सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे इहा सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमरत हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदक हर मेरा भाई। हर की मैं पूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साख अंत हो सखाई, हर दिन होर रास पूरी है चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाओ तहे जाई। सो चूठा जो चूठे लागे, चूठे कर्म कमाई। कह नानक हर का पाना हुआ, कहना कछु न जाई। गुजरी महला तीजा, जुग माहे नाम दुलंब है गुरमुख पाया जाए। बिन नामे मुक्त न हो गई, देखो को वे पाए। बलिहारी गुर अपने सद बलिहार जाओ, सतगुर मिले हर मन वसै सहजी रहे समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सुन रहे समाए। से मुक्ते जे मन जे है फिर तात न लागे आए। दसवें द्वार रहस करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए। इह कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए। गुजरी महला तीजा, राम राम सब को कहे कहे राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे को। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर किस कदे न विसरे हर हर करे।

गए पछताहें। अनेक तीरथ जे जतन करे ता अंतर की हो मैं कदे न जाए। जिस नर की दुगदा न जाए धर्म राय तिस देश जाए। कर्म हो ऐसे ही जन पाए गुरमुख बूझे कोई। नानक विचों हों मैं मारे ता हर पेटा सोई। गुजरी मैला की जा तिस जन सांस सदा मत लिए चले। जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पावे पीवत रहे सदा सुख होई। रहाओ।

0: अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस उह मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु न पाए जिस नजर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वडिआए अपना शब्द वरताए। गुजरी मैला तीजा पंच पदे ना कासी मत उपजे ना कासी मत जाए। सतगुरु मिले मत उपजे ता एह सो जी पाए। हर कथा तू सुन ले मन सदद मन वसाए। ए मत तेरी थिर रहे ता परम विचों जाए रहाओ। हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वै नास। पंच को आत्मा वस करें ता तीर्थ करें निवास। मन मुख एव मन मुग्ध है सो जी किछु न पाए। हर का नाम न बुझे अंत गया पछताए। इव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अष्ट तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सिख सच्चे। दूजा पाए जेता पहें पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द से जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले है मन संतोषी है ता फिर तृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोय। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए। गुरमती कट चानना हर नाम पावे सोए। सुन शास्त्र तू न बुझी ता फिर बारो बार। सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच न करे प्यार। सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए। नानक जो तिस पावे सो करे जो तिसकी रजाए। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद रागु जरी महला चौथा चौकले कर पहला। हर के जन सतगुरु सतपुरखा है बिना करो गुरु पास। हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगास।
1: मेरे मीत गुरुदेव मौको राम नाम प्रगास।
0: गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाए। हर जन के वड पाग वडेरे जिन हर हर सदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय सब को दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। गुरमत पागहीन मत पीके नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वडे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर पुकारे। जो जन सुने सरदार।

रहा गुरमुख वड़ पाजी वड़ पाजे जिन हर हर नाम आधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरख ना पाया ते पागी जम मारे से कूकर सूकर गर्दव पवे गर्भ जोनी दे मारे मां प्यारे दीन दयाल हो जन ऊपर कर कृपाल हो बारे नानक जन हर की शरणाई हर पावे हर निस्तारे गुजरी मेला चौथा हो दयाल मेरा मन लावो हो अंगन राम नाम नित्याई सब सुख सब गुण सब निधान हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दर्ज है ले छाई रहा तू आपे दाता प्रभ अंतर जानी कर कृपा लोच मेरे मन लाई मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख पावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभु हर हर शरणा तिन दर्जे हर हर देव दियाई तन तन शाबाश कहे प्रभु जन को जन नानक मेल ले गर लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जीवाया हम होवे लाले गोले गुरसिखा के जिना अंगिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिनो गुरसिख पगलाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड पाजी गुर के सिख प्यारे हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ तारे हर आपे गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुणबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम ते आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाओ तीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम में हर सो चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोह मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई विखे दृष्ट उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्षों बन आई तब जो कुछ करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें जो आप कराए जिनकी भगत में

0: तू पाए ता कारज आ गया कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख मनता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़ उड़ आवे सह कोसा किस पाछे बचरे छरिया उन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल करिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौक दे कर दूजा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद क्रिया चार करें खट कर्मा इतराते संसारी अंतर मेल न उतरे हूं मैं बिन गुरु बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्योहारी रहाओ सासत वेद सिमरत सब सो दे सब एका बाप पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी अठसठ मज्जन कर स्नाना प्रम आए पर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी तावत तावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन के हर हरे साध संगत में पाया माई खाट आयो कर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी हर हर तार पराना हर तन मेरी चिंत विसारी हर हर लाया तोखा हर तन ते मैं नवनिध पाई हाथ चरो हर खोका खावो खर्चो पोत न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना तुरे पया संजोग। नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना

क्षत्रमानन दान दर्भग सर्ग हैं, अनिल है अनाद है जय आजाद हैं, अजन्म है वर्ण भूत वर्ण हैं, अगंज है बांझा जूझ है दंज हैं, अमीक है रफीक दंध बंद हैं, निर्बूज है सूझ है काल है जाल हैं, अल्लाह है जहा अनंत है महंत है, अलीक है इंद्र श्रीक है इंद्रलंब है सम है, अगम है जम है भूत है सूत है, अलोक है शोक है कर्म है परम है, अजीत है पीत है बाह गाय मानन दान अनेक है ब्री कहें, भुजंग प्रयात शंग नमो सर्वमान्य समाज तीन जाने, नमो देव देवे अपेखिये पेवे, नमो काल काले नमो सर्व पाले, नमो सर्व गावणे नमो सर्व पावणे, अनंगी अनाथि नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मन माने, नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने, नमो गीत गीते नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे, नमो पान पाने नमो बद बादे, अनंगी नामे समाधि स्वरूपे, परपंगी परमाथे समाधि बभूते, कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेशरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे नमो नमो जोग जोगेशरंग परम सुदे, नमो राज राजेशरंग परम हृदय, नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता, अपेक्षीय परमीय भोगिय भुगते, नमो जोग जोगेशरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देव सुधर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो शाशांग नमो भूप भूपे, नमो दान धान्य नमो मन माने, नमो रोग रोगे नमो आसंग सनाने, नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी, अनूपे रूपे समातुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रद करता, अद उर्दर दंग गंग उगहरता, परं परम परमेश्वरं ब्रोज बालं, सदा सर्वदा सिद्ध दा तदयालं, अशेदिय भेदिय नाम अंग कामं, समाज तुबराजी समाज दास्तदामं, तेरा जो उर्चा चरीशंद, जले हैं थले हैं पीता भे हैं, प्रभु आजुआ देश हैं पेस हैं, भुजंग प्रयात शंद, अगा देवा देनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समाज तीन जाने, नमास्तवंग नरनाथे, नमास्तवंग परमाथे, नमास्तवंग गंजे, नमास्तवंग पंजे, नमास्तवंग काले, नमास्तवंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाशाहे, नमो महामाये, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृष्टंग, नमो सर्वकृष्णंग, नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातंग प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धिंग निवासी, चरपट शांत प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल योगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लाग कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग भेवं, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुवाल शंद दव प्रसाद, आद रूपनाद मूर्त जोन पुरख पार, सर्वमान त्रमान देव भेवाद उदारु, सर्व पालक सर्व काल को सर्व गोपन काल, जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप प्रसाद, नाम ठामना जाज जा कर रूप रंग ना रंग ना रेख, आद पुरख दार मूर्त जोन आद शेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा होय फैले वन राग, नाम काम भीन पे दामु न जाए, सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मान तताहि, एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक, देव पेव न जानही जे भेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सु जानी के जेव, सात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्कर वकर फिर चतर जाक मानी पर दीन, लोक चौदह के विखय जग जापी जे जाप, आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप, परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार, सर्व विश्व रचियो सियम पवकर्ण भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त काल पुरुख देश, तरन ताम सु परम रहत भूतला कपेश, अंग राग न रंग जाके जात बातना नाम, गर्भ गंजन दोष्ट मंजन मुक्त दायक काम, आप रूपा मी गानो स्तत एक पुरुख दूत,
गर्भगंजन सर भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंगन आत्मेक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व देन पेख सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंग हर देख परम वेद प्राण जा कहे नेत पाखत नेत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बोचित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन अनाश आजन बाह शान शाह राजन राज पान अनपान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनभूत अंग अपंग गतमित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम आत दुत प्रचंड मित गति अखंड अलिष्ठ कर्म अदृष्ट कर्म सर्व प्रणाड्या आन दंड बाडे चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारिय पारे हरियंग करियंग निर्नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने हैं चतर चकर धाने हैं चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे पवित्र पर दिशा दिशा दृशा कृषय भगवती छंद तव प्रसाद कथते क्या सच देश है क्या पिज पेशा है क्या गंज कर्म है क्या पंज भरम है क्या पिज लोक है क्या दित सुख है के वूत भरण है केव भूत करण है के राजंग प्रवाह है कि धर्मंग तो जाए के अशोक भरण है कि सर्वा भरण है के जगतंग्रति है कि शतरंग क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुभव रूप है के आद देव है के आप पेव है के चतरंग विहीन है के कह दीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हाल कहे के पाक भी है वह के गह बुल गैब है के आप बुल गुनाह है के शाह निशाह है के कारण गुनंद है के रोजी दहन है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गाउन हैं के सर्वत्र पावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाह के सर्वत्र पाह के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परम भीम है के आकलोलाम है के सर्व कलाम है के हुसनो भजू है तमाम रुजू है हमेशल सलाम है सलीक तम धाम है गनीमल उसकास्ता गरीबल परस्ता है बुलंदल मकाना है जमीनोल जमान है तमीजल तमाम है रुजोल नदान है हरीफल जीमा रिजाय के जकीना ने कुल तरंग पेद है पांग है अजीजल निवाज है गनीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है पर भुगत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप बेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाज स्वरूप है गाध अनूप है अंगाध रूप है नाश स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गंग त्रिभाध्य गंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वा नरागे त्रिभुक्त स्वरूप है सज है श्रूत है के नरकंग प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अन उक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पीख है लेख है अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है वय है भूत है दूत है अनाश उदास है दंध है बंध है अभगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है लेख देख है अलेख है पीख है टाह गाय असंभ है गम है नीला नाद है अनित सुनित जात है जात है चरपट छंद तव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं भूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिगामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रै न पुत्रै न सुत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न भातै नरसाकं श्रीकामितोमि गाय सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शांत दाव प्रसाद के जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है सुमा सुल कलाम है के साहब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहमद है।

पर्वत पंखा लेना हलाएंगे तो वो रही मरोर मवास में माते में नंगन मान मलाएंगे सरी बात सरी भगवान कृपा बेनु त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े हार बचारे सर की दार बसैया तोर तो देश में लेंदे मवासन माते जान के मान में लैया गाड़ी गड़ान को तोड़ना हार सो बात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब कोसर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दान वदेव बनंदन साचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जते जल मैं सल मैं पल ही पल मैं सब थाप दपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह बरसन फिरै जग सत्र सब अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरात बजोंतर लोक राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साहिब भरेंगे ब्रह्म महेश्वर श्री पद अंत फले जम बाद भरेंगे जे नार श्री पद के पर सह भाग ते नार फिर न दे धरेंगे कहाँ पहु जो दौलोचन मूंद कह बैठ रहे भगत जान लगायो नहात फिर लिये सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास की उपख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम की हो तन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरे हो सिर काहू ले लिंग लटकायो काहू ले सुहार वाची दिशा मह काहू पछा कोसी सुनवायो कौ बतान को पूजत है बास कौ मृतान को पूजन तायो कूर करया और जो सभी जग सरी भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पातशाही दसवीं कबीरवाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण हो ए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष सब तुम कावो आप हाथ दै मोह बचावो सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा आड़ कर दे करें सब वैरन को आज संगरें पूर्ण

यह है, चन चन सत्र हमारे मार यह है, आप हार दे मुझे भरे हैं, मरण काल का त्रासन भरे हैं, हो जो सदा हमारे पछाल, सरिया तरज कर रचाल, राख ले हो वो रखन हारे, साहेब संत साहेब प्यारे, दीन बंद दुष्ट के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दगंता, काल भाई ब्रह्म अम्बरा, काल भाई सब जीव अवधरा, काल भाई कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जो की सब की हो, वेद राज ब्रह्मा जो थी हो, जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन बजायो, आदि अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझे हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोहबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंज रिया स्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने, जब दर्ख कर अगर तारा, प्रजा दर्द तब दी अपार, जब या करख कर दो कब हूँ, तुम मैं मिलता दे दर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही तेरा तंद्र आलम, जानत भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब, था का मूढ़ चारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन दोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा, अंड जेरज सिद्ध जगिनी, उत बुझ खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा वा बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ गाय जाम पव, आदि जगाद स्वरूप से जाम पव।

सगलब सूरे दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी सुनते बनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते बनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकुर तह अरदास पिंड सब तेरी रा।

जे गुण हो वह गंठड़िया मिलेगा सोई। सज्जन सचा पातशाह सिरशाह दशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुरु सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग सोही महला पहला जपदे कर पहला। भांडा तोय बैस धूप देव तौ दूध कौ जाव दूध कर्म फुन सुरत समायण होय निराश जमाव। भांडा तोय बैस धूप देव तौ दूध कौ जाव दूध कर्म फुन सुरत समायण होय निराश जमाव। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा रहाउ एह जग एह मन हिटी हाथ करो फुल नेत्रों नींद न आवे। रसना नाम जपो तब मथिया इन विद अमृत पावो। मन संपट जित सत सरन आवण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रब्द रहे। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सारू अबर न कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसला ही सच्चा सोई। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सारे।

योग स्मार्ट पुत्र स्मार्ट भोग स्मार्ट पुत्र स्मार्ट सला स्मार्ट जुड़े विस्मार्ट रा स्मार्ट निर्णय विस्मार्ट।

अग्रकरणी कृतवती है, पहले खाकर समझाया उठाओ न हो भी पाउंदी। हूं सुने क्या रू आया, मन अंधा जन्म गवाया।

0: मूर्ख कछु न जानना। पावे परो जन नानक हर का दास है, हर दास पनहारो नानक हर का दास।
1: श्लोक महला पहला, सत्काल पूर्व त्याग कल काल बेताल, बियो बीज पतले

0: बहुत न चलिया जन नानक नाम आराधिया आराधी हर मिलिया जन नानक नाम आराधिया
1: सलो मोहल्ला पहला नानक में श्री का इकरासी कृतवा जुग जुग फेर उतारिये ज्ञानी बुझेता है सतगुरु संतोष का कर्म गिरथवा प्रति रजत का द्वापर तपे का सतगिरथवा कल जुग रथ अगन का
2: मल्ला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सब तो सच मावे रिग कह रहा परपू राम नाम देवा महसू नाय ले प्राश्त जाहे नानक तौ मुखं त्रिपाहि जग में जो शली चंद्रा बलकान जादम दया आजाद को ले आया चंद्रा बन के रंगिया कल में देव घर बन हुआ ना खुदाई अनुभया बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क बठा

पौड़ी सतगुरु विठो वारिया जित मिलया खसम समा लिया जिन कर उपदेह स्यान जन दिया इन नेत्री जग निहालिया खसम छो।

लख दिया पहना मिया रात दृष्टी नाल सज कपाह कपिए बम वटे आए को बकरार खाया सब तो आखे पाए वो एक पुराना छुट्टिए।

0: जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक होय, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होय, जते दाणे अनके जिया बाग न कोय। पहला पानी जियो है जितारे सब कोय, सूत चौका रखिए सूत पवर सोय, नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे।
1: मल्ला पहला मन का सुख लोभ है जेवा सुख कूड़, अखी सुख देखना परत्र परत

कोई न पिटियो जाए, सुचा होए के जीविया लगा पड़न सरोप पहुंची जाई सत्या। किसे लगा ढोक अन्न देवता पानी देवता दसंतर देवता लू

नानका सिपाटिए सब ही रहिस्माए चंगे चंगा मंदे मंदा हो आशिक ए ना आखिए जे लिखे वरते मला दूजा सलाम जवाब दोने करे बुद्धों को खा जाए नानक दोने पूरियां

सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग गए उपाय, हर सिमरन पैर सिर जदी दाते, हर सिमरन नी चौक पुट जाते, हर सिमरन तारी सब करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सरल अकारा, हर

शरण तुम्हारी है नानक के प्रसाद अट करी जय मात पिता सुमित न पाई मन वहाँ नाम तेरे संग सहाई जय माँ प्याम दूध जम गए तय केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल हो गई अट पारी हर को नाम खिल माई उधारी अनंत ने चरण कल्प नहीं कराए हर को नाम को पाप पर हरे गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नाम पाओ सुख मेरे सर्वश्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जपत निष्पर अनंत माया रंग सिख नाम बुझाए हर का नाम जपत आधाए जय मार्ग ए जात अकेला तह हर नाम संभो सुहेला ऐसा नाम मन सरा प्याई है नाम गुरमुख परम गत पाई है छूटना ही को लग पाई नाम जपत है पार पाई अनक बिर जय आय सिंह आ रहा है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जो जन में मर जाऊं नाम जपत पाल विश्राम ओ मेरा मर सबू न तो है हर का नाम कोट पास हो है ऐसा नाम जपो मजांग नाम पाइये साथ के संग जय मार के गणे जय न पूछा हर का नाम हुआ संतोषा जहाँ पौधे माँ अंग गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहाँ पंत पया को ना सिंहानु हर का नाम तय नाल पछानु जय माँ प्यान तप बो काम तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ त्रिखा मन तुझे अकर्थ है तय नानक हर हर अमृत बर्थ है अवजिना की बर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओत हर के नाम उदरी धन कोट हर जस कर्त संजन हाथ हर हर औकत सात कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन पर रंग के रंगित है नानक जन के जित हो देख है हर का नाम जन को मुक्त जोत हर का नाम जन को त्रिपुत होत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की ओर आई हर के नाम जन को बात आई हर का नाम जन को भोग जो हर नाम जपत किस नाम दो जान दाता हर नाम की सेवा नान पूजे हर हर देवा हर हर जन के मार फेदीना हर तन जन को आत्मा दीना हर हर जन को संतानी हर प्रताप जन अर न जानी ओत पोत जन हर सराते सम समाज नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का प्रगत प्रगत नहीं छपे हर की भगत मुकुट बहुत करे नानक जन संकेत करे पार जात हर को नाम काम तेन हर हर गुणगाम सत्य उत्तम हर की कथा नाम संत दर दुख लथा नाम की महिमा संत विधवत है संत प्रताप दुख सब नस है संत का संग बड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम से आई है नाम तुल किस और न हो नाम गुरुमुख नाम पावे जन को चलो वो शास्त्र वो सिंगति एक ही सब चंदोल पूछ नाम हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपरी जाता ज्ञान सब ज्ञान खट शास्त्र सिंह व्यान योग व्यास कर्म कर्म क्रिया सरल त्याग जन्म देख रिया अनंत प्रकार की भोजतना पुण्य दान हो में भोरतना श्री काय हो में खराती वर्त नहीं कोई भो पाती नहीं कुल राम नाम विचार नान गुरु नाम जपिए एक बार नौ खान पृथ्वी फिर चल जीव है माँ उदास की सरथी है अगर मैं हो प्राण अनक ऐसो है वर पूर्ण दान न्यौली कर्म करे भोवासन जैन मार्ग संयम आसाधन निम्ख निम्ख कर श्री कटाव तो भी हो में मैल न जा हर के नाम समझा किस नान गुरुमुख नाम जप जग पार मन कामना तीर्थ छूटे गर्भ गुवान न मन के हुते सोच रो दिन से आ रात मन की मैल न तन ते जात इस सही को वो साधना करे मन से कबू नाम विचार करे जल तोवे बहुत अनीत शुद्ध काय काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियान जम का पौ व्यापे अनंत जतन कर ठिकाना प्राप्त एक अनेक अगन नहीं बुझे कोई उपाय करके नहीं पी जाए सूचना ही वो प्याल वो व्यापे माया जाल अवर कर्पूर सभी जम दान है गोविंद भजन दिन से ईमान है हर का नाम जप दुख जा नाम बोले सह सुबह चार प्रदार जो तू मांगे साजना की सेवा ला जाए ये तो अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सर जावे ये तो अपनी शोभा लोरे सात संग यो मैं छोड़े ये तो जन्म मरण से डरे साजना की सर नहीं करे जिस जन को प्रभु दृष्टि आता नानकता के बल भुल जाता सगल पुरख में पुरख प्रधान सात संज्ञा का मिटे अभिमान आप जाने नीचा
सोगनी इच्छा पूछा जहाँ का मन हो सल की रीना हर हर नाम तुम कर कर चीना मन अपने तो बुरा मिटाना देखे सगल सिख साजना सूख दुख जम सम दिशा नानक पाप पुण्य लेता निशन को तम तेरो नाओ निथाने को नो तेरो थाओ इमानी को कब तेरो मान सर्वपिता को देव दान करम हर स्वामी सर्वपिता के अंतर जामी अपनी जपनी जानो आते अपन संग आप प्रवराते तुम्हारी उस तुम ते होए नानक और न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सर्व क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मद मन हिरा सर्व उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जस तुम रसन बखानी सगल

कुंते पुराने कवन मूल ते कंदिष्टाने जिंतु साज सुहासिन आया गर्भ अजो मैजने उबारया बार व्यवस्था तुदे प्यारे दूध पास जोगन भोजन सुख सूद दुख प्याव ऊपर साथ सहन मुख प्याव बैठ को दैन ए मेरे गुण गुण कछु न बूझे बख्श लो तो नानक की जय जय प्रसाद तार ऊपर सुख बस है सुत प्रात नीत बनता संग है जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदायी पवन पावक अमला जय प्रसाद होगे सब रसा सब सुनेगी संग साथ बसा दीने हट पाव करण नेत्र रचना किसे प्याग अवसन रचना ऐसे दोग मोरंग दिया है नानकालियो प्रभात है आज अंक जोरा संहार इस योगी तन कई द्वार जहाँ की सेवा नो नित पाया ताकि मूरा मन नीला है जो ठाकर ससरा हजूरे तांगो अंधा जानत दूरे जहाँ की तैल पाए तकी मान किसे विसारे मुगदान सरास राय पूर्ण हार नानक रा संहार अपार रतन त्याग कौड़ी संग्रते साथ छोड़ झूठ संगमते जो चलना स्वस्त्र कर्माने जो हवन सो दूर कराने छोड़ जाय किसका श्रम करे संग सहाय किस पर है चंदन ले उदारे हो गाय बाती पसन संग हो अंध कूप में पतक विकराल नानका ले प्रावधान कपूत पशु की मांस जात लोग विचारा करे दंडात बाहर तेज अंतर मल मया सब जनाए कर तरिच पाया बाहर ज्ञान ज्ञान स्नान अंतर व्यापे लोग स्वान अंतर अगम्बार तन स्वा गाल पात्र कैसे परे अथा जहाँ के अंतर बसे प्रवास नानक तेजन सह समाज सोंदा कैसे मार्ग पाया कर गैलो ओ निभाया कहाँ बुझाए बुझे डोरा निष्क्रिय तो समझे कोरा कहाँ बिसन पर जाए गोंग जतन करे तो भी सर पांग कहो पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो आप गवन करतार करना मैं दीन दिन सीख है नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आए न तीत दूर बराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसे आनंद केल माया रंग रसे दृढ़ परमाने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर ग्रोध काम क्रोध मोह तूर विकार महालोक तो क्या हूँ जुगत विहान में कई जन्म नानक राह लो अपना कर कर्म तू ठाकर तुम पे अरदास जियो पिन पर तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सुख ने कोई न जाने तुम रामते ऊंचे थे ऊंचा भगवंत सर

पड़ी। दस बस सोलह पाठे पाए, एक बस कारण वह खोट गया है। एक भी न दे दस भी हिले, तो मोड़ा को कहा करे चिट्ठा कर सो नहीं सारा। ताको की जय सद नमस्कारा, जाके मन लादा अपना मीठा, सर्व सूर ताऊ मन बूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत सा अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनंत उलास, अपनी अमान किस बोर सा लवे, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोए, बहुत उसका विश्वास न होवे, जिसकी बत्तीस आगे रख है, ताकि आज्ञा माने मत है, उससे कौन करे निहाल, नानक साए सदा ध्यान, अनक पात माया के हेत, सर पर होत जान अनेत, वृक्ष की छाया सोन लाल है, ओ बिन सह ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चाल नहार, लपट रहो तै अंध अंधार, बताओ सो जो लावे ने, ताको हाथ ना आवे के, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन तन कदम सभाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोगन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रत हस्ती अस बसरा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या दो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण, मिथ्या शरण पार निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को गिरा, मिथ्या नेत्र पेखत पर क्रिया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन पर उपकारा, मिथ्या दास लेत बिखारा, बिन बूझे मिथ्या सब है, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागर की आर्या, साध बिना तय हो सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवता के दुर्गंध, बिन सिमर

के मन हुए प्रगाव, जैसे हर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपने है सब के नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी सीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी से किस बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गई भी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी से ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह भव सुख फला, ब्रह्म ज्ञानी सुन फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के तैरंग।

ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम अधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर्ता आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बसवर भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बढ़ जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना ब्रह्म ज्ञानी का सरल मनमा ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने फेद ब्रह्म ज्ञानी को स्वादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाए लाकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म

सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी हर जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहाट, ब्रह्म

बहु अंग प्रकार अष्टपदी कई कोट कई पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैती प्रवासी कई कोट बन प्रणय उदासी कई कोट देश के सोते कई कोट तीसरे होते कई कोट आत्म ज्ञान पारे कई कोट कविता विचारे कई कोट नवमन नाम त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभग आत्म निकोर कई कोट पर द्रव कुल है कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया प्रमाए कई कोट सभी प्रमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने कथा रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सब उपाय कई कोट पात्र विरख लिप जाए कई कोट पवन पानी बसंत कई कोट देश भूमंडल कई कोट सत्य सूर निखत कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र सबसे मिली अपने सूर तारे नानक जिस जिस पावे किस किस ने तारे कई कोट राजस्थान शासक कई कोट देव प्राण सिमरत अर्थात कई कोट किए अतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चल जीवे कई कोट गिरी मेर स्वयं सीवे कई कोट जख किनर पिसाज कई कोट भूत पे सुगल मृगाज सब ते मेरे सब से दूर नानक आप अलप्रया प्रपूर कई कोट पता के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीने मरे कई कोट बोझो नि फिरे कई कोट बैठ भी खाए कई कोट काले सब पाए कई कोट किए धनवंत कई

नानक गर्भरे अष्टपदी जिसका अंतराज मानो सोहर पाती हो स्वामी जो जाने न जो बलवंत सो हो तो दुष्टा का जंत आपको कर्म कहावे जन्म मरे बोझों परमावे कर्म कौन का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय भी दिवसा नानक मुकत आगे सुखता है धनवंता कोई कर गरबावे प्रिंस समान किस संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पालती प्रथा का भय विनाश साथे आप जाने बलवंत खिन्न हो जाए पसमंत किसे न बजाए आप हंकारी इस करे खुआरी गुरु प्रसाद जहाँ का मिटे सम्मान तो जन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पारे सरल बिरथार अनक पसया करे हंकार नरक सुर फिर फिर अवतार अनक जतन का आत्म निंद्र हर दरगे को कैसे गए आप उसको जो भला कहावे किसे भलाई मुक्त न आवे फल किए जहाँ का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझे किसी होए तब इस को सुख ना ही कोई जावे जाने मैं किसी करता तब लग गर्भ जो मैं फिरता जब तारे को बैरी नीत तब हमें चलना ही चीत जब लग मुर मगन संगमाए तब लग परमाए देश जाए तब कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सांस कटेला कोट पाए तृप्त आए माया का छिपा है अनेक भोग दिखिया के करे न तृप्ता भी खप खप मरे बिना संतोष नहीं कोई राजा सुपन मनोर तो बिठे सब का जाए नारंग सर्व सुख हो बटवागी किसे प्राप्त हो कर्म कराम आते आप सदा सदा नानक हर जाप कर्म

के संग दूजे देखे करे गुरे आपे एक आपे अने मरे न दिन से आवे न जाओ नानक सदी रहा सुमार आप उपदेश है समझे आप आपे प्यासा के साथ आप जीनो अपन विस्तार सब कुछ उसका ओ करने हार उसके बिन कहो कुछ हो नाम संत ते कैसे अपने चलते आप करने हार कहो तो करे रंग अपार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कर न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोर मदा किने दुर्ल चीना पला पला पला जय रूप असमर आकार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कर सुनी सरवण बखानी पवित्र पवित्र पवित्र कुनी।

जाकर सब प्रस्थान और सबके प्रदान करतु सब जाति जाने सब गुरु समान समाने सब कर्म जब रचना सत मूल सत सत उत्पत सत कर्मी मरने मरी इधर बुझाए देवता फली सत नाम सत्यायी जाने अपनी मिसाक इसकी सिख करते न जाने किया।

आत्म कोई न लट है, सबके सेवकों को न पहुंचा है, सबके सेवक उठे उठे शुक्र पीछे वाला नाथ सोने उठो दर्द उठाया निजी की रीमें कर लट।

सर्वसं परित जे सोबा को करे परिधमी सागो बाबर हर की सन अनुपारी रो न जा रो मिटा हर औखलाए सब नाम है हर नाम निदान भगवान को उतर के प्रवान मन प्रभु दो हर के नाय दैव साध आने था सागो बदला के सोय जा कर रहे बसे हर सोय सरकारी हजार नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ और दिन से पूर्ण हो आस और पाए आत्म प्रदास इस पर जाए बसे अविनाशी।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

उन उसी 71 का नाम दे दिता। लोग इतो कुछ टपला खा के गलत अर्थ करके अज की दुनिया का दुखांत, धर्म की दुनिया का दुखांत शुरू है, जोड़ा साडा असल दुखांत है, खास करके साडा। आपकी दूजी इस तरह है पुस्तक में इस टॉपिक में आरंभ है। असी गुरुद्वारा हाल में जुड़ी हुई एकत्रता का नाम साध संगत दे रहे, बस कोई शर्त नहीं, कोई जीवन म्यार नहीं। जोड़ा गुरुद्वारे की दलीलों हाल में जोड़ा गुरुद्वारा हाल दलीजा पार करके अंदर आ जाए उस साध संगत उन्हें भी जिक्र किया। दो गल्लां असीं इकट्ठियां कर दित्तियां, एक तो यह आख दिता जी संगत ते पंगत की सांझ है जी, कोई भी आवे इत कोई भी आ सकता, चोर भी आ सकता आ सकता, कोई दौड़ है डाकू भी आ सकता आ सकता, विचारी भी आ सकता, शराबी भी आ सकता, करप्शन करने वाला करप्ट भी आ सकता, किसी लोग क्या नहीं जा सकता। जेड़ा अज जो जहा है 10 दिन बाद भी यह जहा रहे वह भी आ सकता, जिस को सर्टिफिकेट नहीं मंगे तू 10 दिन पहला की करता, 10 दिन हो गए तेन गुरुद्वारे तू बदले है कि नहीं बदले तो अंदर आ गए बिल्कुल कोई हर कोई आ सकता। असं आ सच नहीं लफज होर जोड़ दिता, इतों तक वड्डा कर दिता लफज में, वो जोड़ दिता कि गुरु तो 20 हिस्से है, 20 विषय है, सच संगत जी है संगत 21 विषय है, गुरु तो बदल तो शर्त कोई नहीं कि वो दिता संगत हर किया। उनका नतीजा निकलिया कि अज जे साध संगत गुरुद्वारे आने वाली विच गिनती विच एकत्रता विच 500 विच्चों 400 आदमी करपट चोर ठग विचारी शराब पीने वाला बैठा हो, असं आख दें सात संगत को पुछ लो जी संगत का हुक्म नहीं मोड़ना, यह क्योंकि 21 विषय है, उनके 500 विच्चों 400 वह बैठा हूं, वो पहला आवाज उठा, इतने असूल नहीं बन सकता कि सिख होने लिये केस जरूरी नहीं, मजबूर हो जाते रोज सवेरे उठ के नाइट की दुकान वाला भी सिख हो सकता, वो कहता इतने बिल्कुल यह असूल नहीं बन सकता कि शराब पीने वाला प्रबंधक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें मगर संगत की आवाज है, संगत हो गिनती संगत ने वोटा पाइया नहीं जी, संगत का चुने हुआ आया जी, संगत कौन है 500 विच्चों 400 जिंदे मगर 400 वोट है भावे शराब पीने वाला वो प्रबंधक बनेगा, रोजाना दुकान की गल साझी करना चाहना, असं कितों एक लफज में भुट गए हैं कितने भगत लगता है कि लो की गल छड़ दी, गल छड़ दी, असं आखिया जी एकत्रता है यह साध संगत है, तो एकत्रता में शर्त कोई नहीं, हर कोई आ सकता, कि वह 21 विषय है गुरु नाल भी वड्डी है, इसलिए जदों कोई व्यक्ति जैसा भी जीवन का है गुरुद्वारा प्रबंध पर काबज होना चाहता है उदों तो अपनी किस्म के व्यक्ति दूरों न्योड़ियों लिया के भी बिठा लेंदा है, वोटा पवा सात संगत का हुक्म को नहीं मोड़ सकता, सात संगत को पूछ लो हाथ खड़े करा लो, 500 विच्चों 400 बैठे वो हाथ खड़े करते नहीं वोटा पवा, सात संगत का हुक्म मोड़िया नहीं जा सकता, साडा गुरुद्वारा प्रबंध बिगड़न दिया कारण धर्म प्रबंध विच मुदाखलत इं पैदा हुई है, क्योंकि असी साध संगत का म्यार कोई नहीं रखा, हां उनका मकसद यह सी कि कोई भी आ सकता है, जेड़ा भाव गुनागार भी आंदा है गुरु की सिक्ख्या लैंदा है बदलता है उन्हें रोकिया नहीं जा, उस स्कूल का एक विद्यार्थी है पर फैसला करने का अधिकारी कोई प्रबंधक या प्रिंसिपल नहीं,

लगे हो भलिया। इस कर्म खंड की दुनिया में जिन्हें सच खंड बनना है, जिंद प्रभु ने वसना है, विच संगत हर प्रभु वसे जियो, उनका म्यार यह है कि उन्होंने भी गिनती कर कितने भगत वसना है के लोग। म्यार करे आनंद सच्चा मन, जिन्हां दे मन सच नाल जुड़े हुए ने, सीते हुए ने प्रभु दी सिफत सदा नाल, जिन्हां दे अंदर बाहर सच नाल लबरेज है, जेड़ी झूठ दी गल सुनदे नहीं, कूड़ की सोए पहुंचे नहीं, मनसा सच समाणी, कूड़ दी सो भी जिन्हां दे कन्नां विच नहीं पैंदी, उन्हां लोगां दी इकत्रता नूं साध संगत आखी। जदों वो लोग इकत्र हो गए फिर गुरु का बनाया हुआ कर्मखंड बनेगा, जिसे भक्त वसें के लोग आनंद सच्चा कहने लगे, जिस दिन वो कर्मखंड बनेगा फिर तेन वक्रे सचखंड की लड़ नहीं पड़ेगी। और भी एकत्रता जिथे अंदर सच ही सच है, जिथे सच हो गए उसे बना सचखंड है, फिर की होगा सचखंड बनेगा। वो वेखेगा इस भगती संसार नूं, इस कर्मखंड नूं, ते वेख के प्रसन्न होएगा, वेखे विच ते कर विचार सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। वो जदों इन्हां विकसियां होईयां आत्मक परमात्मक जिहड़ियां रूहां ने उन्हां नूं वेखदा ते प्रसन्न हुंदा है, नदर रहमत करदा है, खुशी ते प्रसन्न दी प्रसन्नता दी वर्खा करदा है, आनंद झोली पाउंदा है। अविनाशी खेम चाहे जय नानक, सदा सिमर नारायण दी अवस्था विच लै जांदा है। निहाल अगे कहंदे ने सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, जिसे खंड मंडल वर खंड, उन्होंने किसी होर खंड मंडल में जाने की लोड़ ही नहीं पैंदी। वो कहंदे ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंदे, बस जीवन में आ गए, जो ब्रह्मंडे सोई पिंदे, जो खोजे सो पावे, पीपा पर में परम तत्व है, सतगुर होए लखावे, इत्थे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे ता अंत में अंत, अंदर की दुनिया का भी कोई अंत नहीं पाया जाता, तू बाहर की दुनिया में रब ढूंढना फिरना है। लगे तिथे लो लो जिन्हें उत्थे लो ते लुकाइया ते आकार ने ना, वो कर्म खंडे ने, पर उन्होंने कर्मखंडा में की है जिव जो हुक्म बैठो, वो कर्मखंड है, कार से है, कार का मतलब कर्मखंड है, वो भी कार करते हैं, वो भी कर्मखंडी ने, पर वो अपनी मर्जी दी, अपने जोर दी बनी हुई कार नहीं करते। जिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म बैठो, वो जिमें जिमें हुक्म होंगे उस हुक्म की कार करते, वेखे विगथे कर विचार। ऐसे कर्म खंड जिथे भगत वस्थाएं के लो हो, ऐसे कर्म खंड जिथे हुक्म विचकार की जा रही हो, जिवें हुक्म तवकार हो, ऐसे कर्म खंड वेख के मेरा प्रभु प्रसन्न हो गया, उनके विच वस रहा है, उनके विच बैठ रहा है। वेखे विगथे कर विचार, गुरु कहते हैं ऐसे कर्मखंड में कोई प्रवेश कर जाए तो उस कर्मखंड ने जो सच खंड बनना है, फिर उनकी गल वो दुनिया नूं दस नहीं सकता, वो मान नहीं सकता। जो ये कर्मखंड में प्रवेश करेगा तेनों अंदरों ही सच खंड ते प्रभु वसदा दिसेगा, फिर तेनों ये ताकत नहीं रहेगी कि वह आनंद तू किसी दस दे। तो कबीर गूंगे गुरखाया पूछे ते क्या कहिए सच में हो गलबाड़ी में प्रमाण।

साहब जी महाराज ने सुशोभित ने गरीब नवाज जी ने इन्हां पावन पवित्र अमृतमयी बचना के द्वारा प्रभु की कृपा वाला जेड़ा बिरद है वो दर्शा के साडे जीवां दे जो ऐब ने जो गुनाह ने जो खामियां ऊण ताईयां ने उन्हां नूं मालक जीवां नूं अपने सिमरन वे जोड़